नमस्कार, मैं पंडित राजीव जनार्दन। आप लोग अभी सुन रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आला।

Dadhi. Dadhi means curd. ब्रिज में देर इज ए ग्वालिन हु लव्स कृष्णा. एवरी वन लव्स कृष्णा.